0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
3: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online, और radio पर.
4: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. आज 10 जून 2026 की शाम घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों और अहम अपडेट्स पर नजर डालने का. मैं हूं आपकी होस्ट भव्या पांडे और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर आज का कार्यक्रम सुना जा रहा है. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के हमारे साथ जुड़ रहे सभी श्रोताओं को SBS हिंदी का नमस्कार. मैं हूं भव्या पांडे और अगले एक घंटे हमारा साथ बना रहेगा जहां आपके लिए लेकर आऊंगी कुछ खबरें, प्रेरणादायक कहानियां और जानकारी का एक खास पैकेज. चाहे आप सिडनी में हो या मेलबर्न में या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी अन्य राज्य में, अगले एक घंटे में हम विश्व भर और ऑस्ट्रेलिया की सारी खबरें साथ में सुनेंगे. तो आज के कार्यक्रम में बात होगी NDIS सुधारों यानी रिफॉर्म्स की. फेडरल बजट में प्रस्तावित कटौतियों को लेकर दिव्यांग समुदाय के बीच चिंता बढ़ गई है. आखिर इन बदलावों का असर किस पर पड़ेगा और सेवा प्रदाताओं की क्या चिंताएं सामने आ रही हैं आज जानेंगे. साथ ही आपको बता दूं कि हम आज आपको मिलवाएंगे 2026 के OAM सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर अतुल कुमार गर्ग से. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 3 दशकों से अधिक समय तक समुदाय की सेवा करने वाले डॉक्टर गर्ग की कहानी समर्पण, नेतृत्व और समाज सेवा की एक प्रेरक मिसाल है. इसके अलावा आपको बता दूं कि हाल ही में SBS हिंदी ने एक खास सीरीज आपके सामने हम लेकर आए थे जिसको हम कहते हैं मनी मैटर्स. टैक्स सीजन के इस दौर में एक और जरूरी चेतावनी भी आज आपके लिए लेकर आएंगे. नकली ATO कॉल्स, व्हाट्सएप स्कैम्स और अब AI से मिलने वाली भ्रामक टैक्स सलाह मनी मैटर्स में स्वाति शर्मा आप तक लेकर आएंगी इसके चौथे एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि इन सभी चीजों से आप कैसे बच सकते हैं और अपने टैक्स रिटर्न को सुरक्षित तरीके से कैसे दाखिल कर सकते हैं. तो चलिए इससे पहले हम आगे बढ़ें आपको आज का सवाल बता देती हूं. आज मैं आपको एक फिल्म का डायलॉग बताऊंगी और आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी फिल्म है. ध्यान से सुनिए. डायलॉग है, मुझे स्टेट्स के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया. एक बार फिर से आपको डायलॉग बता देती हूं, मुझे स्टेट्स के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया. क्या आपको इसका जवाब पता है? अगर हाँ तो हमें अपने मैसेजेस भेज दीजिए. नंबर है 04397997. इसके अलावा आपके लिए कुछ बढ़िया से गाने भी लेकर आऊंगी और इस दौरान आपको बताते रहना है कि आप मेरे साथ आज के शो में बने हुए हैं. तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगले एक घंटे में होगी बड़ी खबरें, समुदाय की आवाज, कुछ इंस्पायरिंग कहानियां और आपके पसंदीदा गाने. लेकिन इन सबसे पहले नजर डालते हैं कि देश और दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है. प्रस्तुत है 10 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ. सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से तेज हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान ने एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है. हालांकि हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों अमेरिकी पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं. वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वे क्षेत्र में सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे वहां से हट जाना होगा.

इसी बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के पास कई हमलों और विस्फोटों की खबर दी है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। वहीं उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में आव्रजन विरोधी प्रदर्शन यानी एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हिंसक हो गए हैं। एक चाकूबाज की घटना के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बात करें केन्या की, तो केन्या में भी अमरीकी सहयोग से प्रस्तावित एक इबोला क्वारंटीन सेंटर के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिले हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच प्रदर्शनकारियों को सैन्य अड्डे की ओर बढ़ने से रोक दिया गया है। उधर अफगानिस्तान के हेरत शहर में महिलाओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग की खबर आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्रेस कोड उल्लंघन के आरोप में कई महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर उतरते नजर आए, जिसमें कम से कम 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि तालिबान प्रशासन के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन पहले से ही प्रतिबंधित है। आइए अब नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया की खबरों पर। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू होने के 6 महीने बाद इसके प्रभावों को लेकर मिली जुली तस्वीर सामने आ रही है। नए नियमों के तहत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाबालिगों की पहुंच रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चे अब भी नए अकाउंट बनाकर इन प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने भरोसा जताया है कि एनडीआईएस की जगह प्रस्तावित नया कार्यक्रम थ्राइविंग किड्स 2028 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा और इस योजना के तहत हल्के और मध्यम स्तर की विकासात्मक चुनौतियां या ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को नई सहायता प्रणाली में शामिल किया जाएगा। बात करें विक्टोरिया की, तो विक्टोरिया की राजनीति में भी हलचल बनी हुई है। राज्य की लिबरल पार्टी के नेता जेस विल्सन ने कहा है कि वे वन नेशन के समर्थन के बिना भी आगामी चुनाव जीतने को लेकर अश्वस्त हैं। वहीं एक हालिया सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मौजूदा प्रीमियर जेसिंटा एलन के नेतृत्व में बदलाव की इच्छा भी जताई है। बात करें सिडनी की, तो वेस्टर्न सिडनी एयरपोर्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। नए हवाई अड्डे से पहले उड़ानें 25 अक्टूबर से शुरू होंगी और टिकटों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि पहला जेटस्टार विमान गोल्ड कोस्ट के लिए रवाना होगा। ये एयरपोर्ट जो है वो 24 घंटे संचालित होगा, जो इसे मौजूदा सिडनी एयरपोर्ट से अलग बनाता है। बात करें भारत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की अवधि को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पद की शपथ ली थी और तब से वे लगातार इस पद पर बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है। इस उपलब्धि पर राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समर्थक इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों में इस पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमने सुना आज का न्यूज फ्लैश और अब बात करते हैं एनडीआईएस की। एनडीआईएस कटौती फेडरल बजट में बचत का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन इन्हें लेकर दिव्यांग समुदाय में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। किसे समर्थन में कटौती का सामना करना पड़ सकता है और क्या राज्य सरकारें इस कमी को पूरा करेंगी, ये अभी भी साफ नहीं है क्योंकि बातचीत फिलहाल जारी है। एनडीआईएस प्रोवाइडर हीना सिन्हा चुंग का कहना है कि ये अनिश्चितता प्रतिभागियों और सेवा प्रदाताओं दोनों के बीच इस बात को लेकर चिंता बढ़ाती है कि ये सुधार जमीन पर कैसे लागू होंगे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और ऑस्ट्रेलिया में नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी एनडीआईएस के भविष्य को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। फेडरल सरकार, ग्रीन्स और गठबंधन के बीच एनडीआईएस सुधारों और बजट के बाद प्रस्तावित टैक्स बदलावों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। संसद के शीतकालीन अवकाश

0: पहले अब केवल एक संसदीय पखवाड़ा बचा है और सरकार चाहती है कि इन सुधारों को जल्द से जल्द कानून का रूप दिया जाए। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष और ग्रीन्स का कहना है कि इतने बड़े और दूरगामी प्रभाव वाले बदलावों को बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के पारित नहीं किया जाना चाहिए। इस राजनीतिक खींचतान के बीच सबसे अधिक चिंता एनडीआईएस प्रतिभागियों और उनके परिवारों में देखी जा रही है। कई लोगों को डर है कि प्रस्तावित बदलावों का असर उनके दैनिक जीवन, सहायता सेवाओं और भविष्य की योजनाओं पर पड़ सकता है। ग्रीन्स पार्टी और गठबंधन दोनों ने संकेत दिए हैं कि वे सीनेट में चल रही दो अलग अलग जांच प्रक्रियाओं की समय सीमा बढ़ाने के पक्ष में हैं। ग्रीन्स एनडीआईएस में प्रस्तावित कटौतियां और संरचनात्मक बदलावों की गहन समीक्षा चाहते हैं, जबकि गठबंधन टैक्स सुधारों, नेगेटिव गियरिंग, कैपिटल गेन्स टैक्स छूट और ट्रस्ट से जुड़े प्रस्तावों की और अधिक जांच चाहता है। उप लिबरल नेता जेन ह्यूम का कहना है कि सरकार ने इन विधेयकों को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं दिखाई है।
1: Well, the government's approach to scrutiny of these bills has been nothing short of scandalous. This is a government that promised transparency and accountability. It was one of its commitments on returning to government, and yet it has done the exact opposite. All the Senate is expecting is the opportunity to scrutinize legislation, which is what the Senate's job is. That's our job.
0: उनका कहना है कि गठबंधन एनडीआईएस की मौजूदा व्यवस्था में सुधार का विरोध नहीं कर रहा है। उनका मानना है कि योजना की लागत तेजी से बढ़ रही है और इसकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी है। हालांकि वे कहती हैं कि जल्दबाजी में किए गए बदलाव कमजोर और जरूरतमंद लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
1: I don't think that we should be afraid of having longer inquiries and better scrutiny, deeper scrutiny of any legislation, whether it be the tax reforms that have gone through, so-called reforms, the tax increases that have gone through, or whether it be through quite far-reaching changes to the NDIS. Now, let me be really clear, the Coalition supports improving integrity around the NDIS. It's a program that has run out of control and is becoming unsustainable. It's going to cost Australians too much and potentially put those that are most vulnerable at risk. But at the same time, we want to make sure that the way that that integrity is being imposed is appropriate and isn't leaving anybody behind.
0: आइए जानते हैं NDIS प्रदाता हीना सिन्हा चुंग का इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है।
2: सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्लैरिटी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी अनाउंसमेंट्स डिक्लेयर होती हैं, फिर उनका एक एजेंडा बनता है कि 2027 में ये होगा, 2028 में ये हम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, पर कई बार वो फॉलो थ्रू हो नहीं पाता है और कई बार पॉलिसीज जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती हैं विदाउट कंसल्टेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम बात कर रहे हैं $50 बिलियन इंडस्ट्री की, दैट इंडस्ट्री इज लुकिंग after the most vulnerable people of our society. तो अगर हम उनकी जो lived realities हैं उनको अगर हम इसमें consider नहीं करेंगे तो ना ही government कोई outcomes achieve कर पाएगी, ना ही providers. So number one is clarity. We need more clarity. कब कैसे क्या changes लाई जाएंगी, और दूसरी चीज ये कि इन चेंजेस को अफेक्ट होने के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइडर्स को चाहिए, क्या वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, या फिर वो सिर्फ स्कीम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स हैं वो कैसे कंटिन्यू कर सकेंगे अपना केयर।
0: सरकार की जल्दबाजी के पीछे एक बड़ा कारण फेडरल बजट भी है। कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स के हालिया बजट में एनडीआईए सुधारों से होने वाली अरबों डॉलर की बचत को पहले ही शामिल किया जा चुका है। यदि ये सुधार समय पर लागू नहीं होते हैं तो सरकार के बजटीय अनुमान भी प्रभावित हो सकते हैं। क्रेटन इंस्टीट्यूट के डिसेबिलिटी प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर सैम बेनेट का कहना है कि बजट में शामिल बचत का सबसे बड़ा हिस्सा एनडीआईए से आने की उम्मीद है।
3: Well, it's going to have a very significant impact. As you said, I think, you know, whilst there's been a lot of focus on other aspects of the most recent federal budget, the tax reform elements in particular, there's a strong argument that the NDIS savings in that budget are the single biggest component of it. As you said, more than $37 billion, I think it is. It's more than a third of the overall savings in the budget, and obviously if those savings don't materialize over the forward estimates as is expected, then that will have a significant knock-on impact.
0: हालांकि उनका मानना है कि एनडीआईएस में कुछ संरचनात्मक सुधार प्रस्ताव

0: आवश्यक हैं। उनका कहना है कि वर्षों से योजना की लागत जिस गति से बढ़ रही है उसे नियंत्रित किए बिना इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। उधर एनडीआईएस मंत्री जेनी मैकअलिस्टर सरकार के रुख का बचाव कर रही हैं। उनका कहना है कि सुधारों का उद्देश्य योजना को कमजोर करना नहीं बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित बनाना है।
1: At the outset, I want to establish that the Albanese government remains committed to the long-term sustainability of the NDIS and ensuring that it continues to provide life-changing supports for people with permanent and significant disability.
0: सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक के तहत 2030 तक कम से कम 1,60,000 लोगों को NDIS से बाहर किए जाने का अनुमान है। यही वे प्रस्ताव है जिसने सबसे अधिक विवाद खड़ा किया है। सीनेट की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर मंत्री जेनी मैकअलिस्टर और जॉरिन स्टील जॉन के बीच तीखी बहस देखने को मिली। वहीं मैकअलिस्टर ने जवाब देते हुए कहा है कि धोखाधड़ी पर कार्रवाई से होने वाली बचत सीधे प्रतिभागियों के हित में जाती है और इसी कारण वे बजट के आंकड़ों में अलग से दिखाई नहीं देती। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि धोखाधड़ी रोकना जरूरी है, लेकिन ये एनडीआईएस की वित्तीय चुनौतियों का मुख्य कारण नहीं है। डॉक्टर बेनेट के अनुसार अगले दो वर्षों में प्रस्तावित बचत का बड़ा हिस्सा सामाजिक और सामुदायिक भागीदारी से जुड़े समर्थन कार्यक्रमों में कटौती से आएगा। ये वे सेवाएं हैं जो एनडीआईएस प्रतिभागियों को घर से बाहर निकलने, समुदाय से जुड़ने, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने और अधिक स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करती हैं।
2: And that's because some of those other measures, those ones that are really fixing big structural problems with the NDIS, are going to take longer to design and to implement and to enable.

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: ये Thriving Kids कार्यक्रम भी शामिल है. हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि राज्यों और क्षेत्रों की सरकारें समय पर वैकल्पिक सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाई, तो कई लोग सहायता व्यवस्था के बीच में फंस सकते हैं.
4: But it places a huge onus on states and territories and the federal government getting their skates on to ensure that these services are in place in time for those changes, because people will fall through the gaps if that doesn't happen.
3: अब सीनेट की जांच समिति अगले हफ्ते सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करेगी और 16 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. इस बीच हजारों NDIS प्रतिभागी, उनके परिवार और सेवा प्रदाता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि संसद में होने वाली राजनीतिक बातचीत का नतीजा क्या निकलता है. क्या सरकार अपने प्रस्तावित सुधारों को समय पर पारित करवा पाएगी, या फिर ग्रीन्स और गठबंधन की मांग पर इन्हें और अधिक जांच के लिए आगे भेजा जाएगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा. SBS न्यूज के लिए टी मिशेल की इस खबर को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे. तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश, और उसके बाद हमने एक रिपोर्ट सुनी NDIS पर. चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौटकर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. आप कहीं मत जाइए, सुनते रहें SBS हिंदी.
5: Ready to order?
6: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
5: Everything?
7: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
8: Yes, Chef!
6: This is so nice.
7: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
6: Ooh, tiramisu!
7: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies.
9: This is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. और आपको बता दूं कि वक्त हो रहा है 5:20, और यदि आप आज के कार्यक्रम में मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो कोई बात नहीं. आपको बता दूं कि आप SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर ये सभी कार्यक्रम और अंश फिर से सुन सकते हैं. इसके अलावा SBS हिंदी इंस्टाग्राम पर भी आ चुका है, और वहां पर हम आपके लिए खबरों को एक अलग अंदाज में यानी वीडियो फॉर्मेट में लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि विश्व भर में और ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ चल रहा है. तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और देखें SBS हिंदी का एक नया रूप. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भारत में क्या कुछ चल रहा है. लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से आज का सवाल बता देती हूँ. अभी मैं आपको एक डायलॉग सुनाऊंगी और आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है. डायलॉग कुछ इस तरह से है, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया. एक बार फिर से बता रही हूँ, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया. तो अगर आपको इसका

0: सही जवाब पता है तो मुझे अपने जवाब 04397997667 पर भेज दें। और मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने ये फिल्म तो देखी ही होगी, लेकिन उसी वक्त पर सही जवाब भेजना और रिकॉल करना कि अरे ये यही फिल्म थी, ये होता है सबसे ज्यादा टफ। तो यदि आपको पता चल चुका है कि ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है तो जल्दी से अपने फोन उठाएं और मुझे बता दें। और जब तक आप अपने मैसेजेस मुझ तक भेज रहे हैं, आइए सुनते हैं हमारी इंडिया रिपोर्ट और जानते हैं कि भारत में क्या हो रहा है।
1: भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के दलों की आज बैठक होने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के अलावा गठबंधन में शामिल दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक पद में रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम पर है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री 1952 से 1964 तक सत्ता में रहे थे। 1947 से 1952 का उनका कार्यकाल अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में था। भाजपा नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को लोकप्रियता और भरोसे से जोड़कर देख रही है। इसे बड़ी उपलब्धि मानकर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नई दिल्ली में हैं। उन्होंने इस बैठक के बारे में कहा,
2: हमारे देश के सुप्रिय प्रधानमंत्री जी के शानदार 12 वर्ष पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में 12 साल बेमिसाल, 12 साल विकास के, 12 साल विश्वास के और 12 साल गरीब कल्याण योजना के, इस पर सभी एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों का बैठक।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की।
3: आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा यशस्वी पूर्ण प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल निभाने वाले नरेंद्र मोदी जी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। इस देश को विकास की ओर ले जाने का काम उन्होंने किया है।
1: सरकार अपनी 12 साल की सत्ता को उपलब्धियों का कालखंड बता रही है तो विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया है। कांग्रेस नेता अमिताभ दुबे आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं,
4: तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के बजाय छठी बड़ी अर्थव्यवस्था आज वर्तमान में भारत है और लगातार जो रैंक्स हैं वो गिरते जा रहे हैं और एक इसका महत्वपूर्ण कारण है, एक बड़ा कारण है रुपए की तेजी से गिरना। अब 97 तक तो 97 पार हो चुका है, 100 पास आ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पे। महंगाई बढ़ती है, तेल का रेट बढ़ता है, जो भी इम्पोर्ट्स होते हैं उनका रेट बढ़ता रहता है, तो इससे बहुत भारी एक गहरी संकट हमारी अर्थव्यवस्था को जूझना पड़ रहा है।
1: यूपीए काल से जीडीपी विकास दर की तुलना करते हुए अमिताभ दुबे का कहना है,
4: वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार, पूर्व सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम खुद ने कहा है कि जब यूपीए के समय जब जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा था, सच्चाई से 1.5% कम दिख रहा था और मोदी सरकार के शासनकाल में 1.5-2% ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप सीधी बात समझ सकते हैं कि एक तरफ वो जीडीपी का रेट आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हैं और लेकिन फिर भी हमारा जो जीडीपी टारगेट है वो मिस होते जा रहा है। तो आप बताइए, ये निकम्मापन जो है इससे साफ दिखाई दे रहा है।
1: राज्यसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। उन पर जानकारी छिपाने का आरोप है। विधायकों की संख्या के आधार पर भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर आसानी से जीत हासिल हो सकती थी। भाजपा ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं जबकि कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार का नामांकन अब खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में 3 सीट भाजपा के नाम हो सकती है। वैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा इस मामले में खटखटा रही है। मंगलवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के गेट पर ही कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। धरने पर बैठे सचिन पायलट ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया।
5: छोटे मोटे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उस पर निर्वाचन आयोग किसी के नामांकन को रद्द नहीं कर सकता और हमारी उम्मीदवार के ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है। एक नोटिस कोई आया होगा उसके आधार पर आप राज्यसभा का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है।
1: जानकारी छिपाने के आरोप पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं,
6: आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूं और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए।
1: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत ने ओमान को धन्यवाद दिया है। दरअसल ओमान तट पर अमेरिकी नौसेना के हमले के बाद जहाज पर सवार 24 भारतीयों की जिंदगी संकट में आ गई थी। ओमानी प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को इस बारे में बताया,
7: हमें ये पता चला कि ये जहाज पलाव के झंडे के साथ समुद्र में अपना काम कर रही थी। हमको ये भी पता चला है और ये हमको जानकारी है कि जहाज के बीच और अमेरिकी नौसेना के बीच उनके बीच वार्तालाप हुई। इस घटने से पहले इस जहाज पर 24 भारतीय नागरिक कार्यरत थे। जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। साथ ही साथ अन्य जो पक्षधर इसमें है MRCC है, भारतीय जहाज मंत्रालय है, सबके साथ बातचीत करके तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया।
1: वैसे पश्चिम एशिया संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल और LPG के दामों में हुई वृद्धि से आम लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ा है। दाम बढ़ाने के बावजूद तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ाई जा सकती हैं। और अंत में चर्चा मानसून की, जो पूरे दक्षिण भारत में सक्रिय हो चुका है। इसके अलावा पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून ने दस्तक दे दिया है। इसका प्रभाव अब मध्य और उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगा है। अगले 3-4 दिनों में उत्तरी राज्यों में भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
0: तो दोस्तों ये हमने सुनी खबरें भारत से और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि आज मैंने आपसे पूछा है एक फिल्म का डायलॉग और पूछा है कि आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है। तो डायलॉग ध्यान से सुनिएगा। मुझे स्टेट्स के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। अगर आपको इसका जवाब पता है तो 04397997667 पर अपने मैसेज मुझ तक भेजते रहें। और खूब सारे संदेश मुझे आ गए हैं और आप सभी के नाम, और ये भी बताऊंगी कि क्या आपका जवाब सही है या गलत है, क्योंकि कुछ गलत जवाब भी आए हैं। तो उसके लिए आप सुनते रहें SBS हिंदी। और उससे पहले आप ये बढ़िया सा गाना सुनें।

तो दोस्तों आज का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं मुझे। नंबर है 04397997667। आप मेलबर्न से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सिडनी से या कैनबेरा से, आपका एक संदेश हमारा दिन बना देता है। तो जरूर अपने सुझाव मुझे लिख भेजें और बताते रहें कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है, किस तरह के गाने सुनने का आपको आज मन है, और आज के सवाल का जवाब भी जल्दी से भेज दें।

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस सम्मान के पीछे केवल सार्वजनिक सेवा ही नहीं बल्कि परिवार, पेशेवर जीवन और सामुदायिक दायित्वों के बीच संतुलन की एक प्रेरक यात्रा भी छिपी हुई है। तो आइए सुनते हैं ये खास बातचीत।
3: किंग्स बर्थडे ऑनर्स में एक नाम है डॉक्टर अतुल कुमार गर्ग का, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। उन्हें अपने समुदाय की सेवाओं के लिए इस साल मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी OAM से नवाजा जा रहा है। 3 दशक से लंबा उनका सामुदायिक सेवा का एक इतिहास रहा है, एक कमिटमेंट रहा है, वॉलंटियर के तौर पर नेबरहुड सेफ्टी में, मल्टी कल्चरल एंगेजमेंट में। तो आज इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे उनसे। और सबसे पहले तो डॉक्टर अतुल, आपको हमारी तरफ से, SBS हिंदी की तरफ से इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद निशाली।
3: आप जब से ऑस्ट्रेलिया आए तब से आपने वॉलंटियरिंग और समाज सेवा शुरू की डॉक्टर गर्ग, जो कि आसान काम नहीं है, तो किस तरीके से ये समाज सेवा आपके जीवन में शुरू हुई?
4: सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया तो नौकरी सबसे पहले ढूंढना होता है, फिर देखना होता है कि कहाँ घर लेंगे, कहाँ पे स्कूल लेंगे। मेरा भाग्य इतना अच्छा था कि मुझे ये सब चीजें फटाफट होती चली गई और एकदम से ऐसा सेटल हो गया कि मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं तो वहाँ पे तो नेवी में कमांडर था, बड़ी अच्छी जिंदगी थी, पर मेरी वाइफ की छोटी सिस्टर और मेरी वाइफ के बड़े ब्रदर ने माइग्रेट कर लिया, तो फिर मेरी वाइफ का भी इंटरेस्ट हो गया कि हम भी माइग्रेट कर लें। जब यहाँ पे मैं आ गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बहुत डिसिप्लिन सोल्जर हूँ, ऐसी अपनी डिसिप्लिन लाइफ से मैचिंग ऐसी चीज मिल गई जो नेबरहुड वॉच थी। तो इसलिए मैंने नेबरहुड वॉच में सबसे पहले आने का सोचा कि इसके अंदर ऐसा कुछ है जिसमें मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी और अपनी डिसिप्लिन

0: advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: मैं शुरू में जब मैं आया था तो इनकी भी एक हायरार्की है, जैसे स्ट्रीट रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर, फिर सबर्ब मैनेजर, फिर कमिटी मेंबर और फिर बोर्ड मेंबर, फिर बोर्ड चेयरमैन. तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इन सब हायरार्की की पोजीशंस के थ्रू गुजर चुका हूँ. पुलिस हेडक्वार्टर्स ने मुझे नेबरहुड वॉच के बोर्ड का चेयरमैन घोषित किया है. तो अब मैं इनॉग्रल चेयरमैन हूँ. अभी तक पुलिस हेडक्वार्टर्स खुद इन नेबरहुड वॉच को चलाता था, अब वो चाहते हैं कि अब ये इंडिपेंडेंट बॉडी चलाए. तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है. इनका सबसे पुराना वॉलंटियर होने के नाते उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है.
7: इसी के साथ साथ, एक तो इतनी बड़ी नेबरहुड वॉच के साथ आपकी अचीवमेंट रही है, दूसरा भारतीय समुदायों के साथ वहाँ पे भी आपने बहुत काम किया है. इंडियन ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करी है, भाषा को लेकर के काम किया है, विश्वास को लेकर के काम किया है. उस सब में जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो सबसे ज्यादा गौरवान्वित क्या करता है, सबसे ज्यादा सुकून किस चीज में मिलता है?
6: सबसे ज्यादा सुकून तो मुझे इस बात का मिलता है कि मुझ में कुछ काबिलियत है कि मैं कोई भी नई संस्था को बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, और वो संस्था मेरे बिना बाद में अपने आप काम कर सकती है और बहुत अचीवमेंट कर सकती है. देखा जाए तो हिंदी समाज जब हमने बनाया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो तीन बनाने वाले लोग थे. हमने मीटिंग करी, हमने कहा कि हमारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कोई हिंदी समाज नहीं है. वो आज इतने मेहनत से काम कर रहा है कि 10 पाठशालाएं चल रही हैं, काफी योगदान कर रहा है कि लोगों को हिंदी सिखाई जा सकती है. जिन जिन का इंटरेस्ट है, खास करके जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, वो भी कुछ सीख सकते हैं. मुझे भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया था कि हिंदू एसोसिएशन को लीड करने का. यहाँ पे कोई भी प्रॉपर मंदिर नहीं था, छोटे से हॉल में मंदिर चलता था. तो मैंने कहा कि कमिटी ज्वाइन करके अपने प्रेसिडेंट के टाइम पे 2003-4-5 में ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मंदिर का काम हम पूरा कर देंगे. ये कुछ समझिए कि भगवान ने कुछ दैविक शक्ति ऐसी दी कि मैं सबको लीड कर पाया और $1 मिलियन का जो है उस टाइम 2003-4-5 में एक्सपेंडिचर था, क्रिएट करके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग, उसे हम पर्थ हिंदू टेम्पल कहते हैं, उसमें मुझे लीडरशिप रोल प्ले करने का मौका दिया. अब 10 साल पहले डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत हो रहे थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में. टोटल 300 रिपोर्टेड केसेस में 100 इंडियंस के थे. और फिर जो बिरीमेंट केसेस, जो कोई मर जाता था या उनके कैसे संस्कार होने हैं और जो उनके पास, किसके पास पैसे नहीं है, उनकी कैसे हेल्प होगी, तो इस टाइप की बातें फिर हमारी जो उस टाइम संस्था थी नहीं कर पाती थी. तो एक और कौंसल जनरल ने यहाँ पे, उन्होंने एक संस्था बनाने का आइडिया दिया. तो मुझे फिर से चुन लिया गया, तो मैंने फिर एक्सेप्ट कर लिया था ये काम. और आज 10 साल हो गए. वो संस्था का नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. बिरीमेंट के केसेस करीब 300 के करीब ऐसे हम, मतलब जिनके डेड बॉडीज के केसेस, कुछ को इंडिया भेजना पड़ता है, कुछ को यहीं पे मैनेज करना पड़ता है, वो हमने हैंडल किए हैं. एल्डर अब्यूज, यहाँ पे जो भी गाइडेंस मांगते हैं हम हमेशा करते हैं कि कभी एल्डर्स को जरूरत पड़ जाती है, कैसे अपने बिल्स को हैंडल करें. तो इस टाइप के काम फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन बहुत अपने गौरव के साथ करती है.
7: ऐसी क्या चीजें रही हैं जो आपको इतने सालों से समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करती रही हैं? What has kept you motivated?
6: भारतीय संस्कृति में ही सेवा का बहुत महत्व है. और कुछ ये है कि बचपन से ही मेरे माता पिता ने सिखाया. मेरे पिताजी भारत के काफी नामी सिविल इंजीनियर थे. भाखड़ा और ब्यास डैम बनाने में उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया. उन्होंने शुरू से ही मुझे ऑनेस्टी और हार्डवर्क के बारे में संस्कार दिए. तो किस्मत से मैं स्कूल टाइम पे भारत का टॉपर था, स्कूल टाइम का टॉपर था. उसकी वजह से मैं अच्छे स्कूल में पढ़ पाया, बोर्डिंग लॉजिंग सब फ्री हो पाई मेरी. तो मुझे शुरू से ही मेहनत करने का शौक है. उसके बाद नौसेना ने मुझे डिसिप्लिन और सर्विस बिफोर सेल्फ का भाव दिया. तो यही वैल्यूज मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में भी आ गई और आज तक यही मेरी प्रेरणा बनी हुई है.
7: तो डॉक्टर गर्ग, आप अपने पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में कई सारी चुनौतियों का सामना करते रहे हैं. 1999 से आपकी पत्नी लीगली ब्लाइंड

0: रही हैं, उसके साथ परिवार को बड़ा करना, कम्युनिटी सर्विस को इस तरह से ध्यान देना, किस तरीके और अपने करियर के ऊपर ध्यान देना, तो किस तरीके से आपने इन सब में एक सामंजस्य बिठाया? क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी शिकायत है कि समय नहीं मिलता।
1: वैशाली, ये बिल्कुल सही बात है कि जिससे पूछे वो यही कहता है कि समय नहीं मिलता। इतनी सारी संस्थाओं में लीडरशिप का रोल प्ले करना, इस चीजों के बावजूद कि मुझे अपने दोनों बच्चों को बड़ा करना था, अकेला सोल ब्रेड विनर था। अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ के साथ मैक्यूलर डिजेनरेशन हो गई सडनली, वो शी वर डिक्लेयर्ड लीगली ब्लाइंड। इतने अच्छी पोजीशन पे स्कूल में टीचर और स्कूल में उसी स्कूल में स्विमिंग कोच भी थी। तो ये सब चीजें मैनेज करने के लिए मैं कहता हूँ कि मुझे सब शक्ति भगवान ने दी, और भगवान ने ही अपने मंदिर बनाने में लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए मौका दिया। मंदिर में तो आप जानते हो कि जब बैठते हो तो पत्नी हमेशा साथ बैठती है। मेरी पत्नी को बहुत गौरव का अनुभव होता था जब भी वो मेरे साथ आके बैठती थी। उसके साथ साथ मंदिर के बाद भी जब भी मौका मिलता है वो मेरी हमेशा हेल्प करती रही है। एक मुझे टाइम डिवाइड करने का बहुत बड़ा स्किल है। अपनी 11-12 संस्थाएं जो मैं चलाता हूँ उनके अलावा अपने परिवार को भी हमेशा ध्यान रखता हूँ। जो मेरा मेरा पुत्र है वो नेवी में यहाँ पे रिजर्विस्ट है, और जब भी उसे किसी जहाज पर जाने का रिक्वायरमेंट होता है मैं उसके परिवार को यानी अपने पोतों को स्कूल से पिकअप करने में प्रायोरिटी देता हूँ हमेशा, और कोशिश करता हूँ कि जो देश के लिए जरूरी काम मेरे बेटा करने जा रहा है उसमें कोई इफेक्ट ना हो।
0: और आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा डॉक्टर गर्ग, के आज की जो यंग इंडियन ऑस्ट्रेलियन जेनरेशन है, उन्हें वॉलंटियरिंग को लेकर के या फिर लीडरशिप को लेकर के या जो हम परसिवियरेंस की बात कर रहे हैं उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप?
1: बहुत बहुत सही सवाल है। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया को केवल नौकरी या बिजनेस का स्थान ना समझें, बल्कि इसे अपना घर माने, कम्युनिटी से जुड़े, जहां मौका मिले वॉलंटियर करें, लोकल एक्टिविटीज में भाग लें और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मित्रता करें। ये नहीं सोचें कि मुझे सिर्फ इंडियंस या हिंदुओं से बात करनी है, मुझे और किसी से बात ही नहीं करनी, मैं यहाँ टेम्परेरी आया हूँ, कुछ पैसे बना के मैं वापस इंडिया चलाऊंगा, ऐसा कभी नहीं समझे। अपनी भारतीय पहचान जरूर बनाए रखें, परंतु ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज हर जगह जगह पे लिखी होंगी आपको, ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फेयरनेस और कम्युनिटी स्पिरिट। ये बार बार सरकारी डिपार्टमेंट्स आपको बार बार ये दोहराते हैं, उनको देखें, समझें और उनको अपनाएं।
0: इस पॉडकास्ट में प्रस्तुत विचार व्यक्तिगत हैं, निजी हैं, SBS ना ही इनसे सहमत है और ना ही असहमत। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौटकर सुनेंगे मनी मैटर्स सीरीज का चौथा एपिसोड। सुनते रहें SBS हिंदी।
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। और एक बार फिर से आपको आज का सवाल बता देती हूं। आज मैंने आपसे एक बहुत ही मशहूर डायलॉग पूछा है बहुत ही फेमस फिल्म का, और आपको मुझे इस फिल्म का नाम बताना है। तो डायलॉग ध्यान से सुनिए।

0: मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। बताए कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है। नंबर है 04397997667 और आपके संदेशों का मुझे इंतजार रहेगा और जल्द बताऊंगी कि आज के कार्यक्रम में किन किन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं टैक्स के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया में टैक्स स्कैम और भी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं और टैक्स के समय गलत जानकारी भी बहुत ज्यादा फैलने लगी है। नकली एटीओ कॉल, बड़े रिफंड का वादा करने वाले व्हाट्सएप मैसेजेस और अब एआई टूल्स भी पूरे भरोसे के साथ ऑस्ट्रेलियाई टैक्स सवालों के गलत जवाब दे रहे हैं। तो मनी मैटर्स के आज के एपिसोड में इसी विषय को लेकर आ रही हैं स्वाति शर्मा, जिसमें बात होगी ऐसे टैक्स स्कैम्स की जिनसे हमें सावधान रहना है, असली टैक्स एजेंट को कैसे वेरीफाई करना है और क्या अपने टैक्स रिटर्न के लिए हम एआई पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं।
1: आप सुन रहे हैं
2: मनी मैटर्स,
1: एसबीएस हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और आप सुन रहे हैं एसबीएस हिंदी की सीरीज मनी मैटर्स। इस सीरीज के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएं जो हर साल हमारे समुदाय में अक्सर पूछे जाते हैं टैक्स सीजन से पहले। आज का टॉपिक है टैक्स स्कैम्स और मिस इन्फॉर्मेशन। टैक्स सीजन में हम हैं और इस सीजन के आसपास बहुत सारे स्कैम्स तेजी से बढ़ जाते हैं। फेक एटीओ कॉल्स आते हैं जिसमें धमकी दी जाती है कि आपका केस कोर्ट में जाने वाला है, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि आपका रिफंड पेंडिंग है और नीचे दिए लिंक पर क्लिक कीजिए, या ईमेल आते हैं जो बिल्कुल एटीओ जैसे दिखते हैं पर होते नहीं। सच यह है कि एटीओ कभी भी फोन पर आपसे धमकी भरी भाषा में बात नहीं करता, कभी भी व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल में लिंक भेजकर बैंक डिटेल्स की मांग नहीं करता, ना ही गिफ्ट कार्ड्स या क्रिप्टो करेंसी या फिर बैंक ट्रांसफर से पेमेंट की मांग करता है। अगर कोई ये सब कर रहा है तो वो निश्चय ही स्कैम है। दूसरा बड़ा इशू है फेक या अनरजिस्टर्ड एजेंट्स। अक्सर लोग किसी की रिकमेंडेशन पर टैक्स एजेंट ढूंढते हैं, पर कभी कभी ये चेक करना जरूरी नहीं समझते कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं। और एक नई चीज जो आज लोग कर रहे हैं, चैट जीपीटी या जेमिनाई या फिर एआई टूल्स से टैक्स के सवाल पूछना। इन सभी पर आज डिटेल में बात होगी, जिसके लिए हमारे साथ हैं पुनीत सिंह जो विक्टोरिया में एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसबीएस हिंदी पर। बहुत सारे लोग किसी कम्युनिटी मेंबर या फिर किसी दोस्त मित्र की रिकमेंडेशन पर टैक्स एजेंट चुनते हैं। कोई कैसे चेक कर सकता है कि वो टैक्स एजेंट एक्चुअली रजिस्टर्ड है या नहीं, और कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो बताते हैं कि एजेंट डॉजी हो सकता है?
3: थैंक यू स्वाति जी। देखिए जी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये कि जब आप एक अकाउंटेंट को अप्रोच करते हो या आप किसी को अपना टैक्स फाइल नंबर शेयर करते हो, मेक श्योर आप अपना टीपीबी रजिस्टर पे जाके, टैक्स प्रैक्टिशनर बोर्ड के रजिस्टर पे जाके उसका नाम या उसका टैक्स एजेंट नंबर डाल के चेक कीजिए कि वो रजिस्टर्ड एजेंट है कि अनरजिस्टर्ड है। क्योंकि ऐसा देखने को आया है कि बहुत बड़े रिफंड्स ऑफर किए जाते हैं, आपसे आपकी माईगव डिटेल्स मांगी जाती है ताकि आपको बड़ा रिफंड करवाएंगे। दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स। एक रजिस्टर्ड अकाउंटेंट के पास जब आप जाओगे, बिफोर अप्रोचिंग एन अकाउंटेंट, मेक श्योर कि आप टीपीबी की वेबसाइट पर जाके चेक कीजिए कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है।
1: एक नई चीज जो शुरू हो गई है पुनीत, कि आजकल लोग चैट जीपीटी या जेमिनाई या फिर किसी और एआई टूल से टैक्स के सवाल पूछ रहे हैं, ये कितना सेफ है और ऑस्ट्रेलियन टैक्स पर एआई कैसे गलत हो सकता है, या फिर असल इंसान से बात करनी क्यों जरूरी है?
3: देखिए जी, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होना बड़ी जरूरी है। एआई, जेमिनाई या क्लॉड, दे प्रोवाइड वास्ट नॉलेज, बट अब आपको देखना है कि आपका सोर्स क्या है, राइट? सो आई वुड डेफिनेटली एडवाइज कि जो भी क्लाइंट्स या जो भी सुनने वाले हैं, कि आपको ये चीज देखनी है कि आप एटीओ की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर सारी डिटेल्ड चीजें बताई गई हैं विद एग्जांपल्स। एटीओ ने हाल ही में कुछ चेंजेस किए हैं अपनी वेबसाइट पे, एंड दोज आर ब्रिलियंट चेंजेस। उन्होंने काफी अच्छी वेबसाइट बनाई है विद एग्जांपल्स। आप सिंपली जाइए उनकी वेबसाइट पे, आप सर्च कीजिए अपना टॉपिक। उनका एक कम्युनिटी, एटीओ कम्युनिटी पेज भी है जहां पर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, एंड जो वेरीफाइड यूजर है, जो अकाउंटेंट है, वो आपको आंसर भी करेंगे, ताकि आप एआई, चैट जीपीटी के गलत राह पे मत जाइए।
1: पुनीत, तब बात करना चाहती हूँ टैक्स और सुपर एनुएशन से जुड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम्स की, जैसे गारंटीड रिटर्न्स हैं या एटीओ अप्रूव्ड स्कीम्स हैं, और फेक सुपर रोल ओवर ऑफर्स भी आते हैं। ये हमारी कम्युनिटी में भी

0: हैं, तो इसे कैसे कोई पहचान सकता है, और अगर कोई इसका विक्टिम बन जाए तो क्या कर सकते हैं?
1: जी, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अपनी TFN की जो नंबर्स है, TFN नंबर इज वेरी सेंसिटिव नंबर, अपना TFN नंबर सिर्फ अपने रजिस्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ही शेयर कीजिए। अपना MyGov की डिटेल्स किसी को मत दीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई अनरजिस्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज चाहे बटन उसने प्रेस किया है बट रिस्पॉन्सिबल आप हो, पेनल्टीज आपको पड़ेगी। सो मेक श्योर जब भी आप किसी को डिटेल्स देते हो प्रॉपरली वेरीफाई कीजिए कि वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। आपको ज़्यादा बड़ा रिफंड दिला रहा है वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है, विदाउट आस्किंग मच इन्फॉर्मेशन वो आपको एक बड़ा रिफंड दिला रहा है वो भी एक रेड फ्लैग है। अगर आपको कोई बोल रहा है मैं आपकी GST रिफंड करवा देता हूँ, ये गवर्नमेंट की स्कीम है आपको GST रिफंड आ जाएगी, ये बहुत बड़ा स्कैम है एंड इसके ऊपर सीवियर पेनल्टीज हैं, जेल टर्म्स भी हैं। ऑपरेशन पोर्टिगो इसी के तहत चला था जब 4.2 बिलियन का GST फ्रॉड हुआ है इन लास्ट 2 ईयर्स एंड 8 ईयर्स वेरी सीरियस दीज डेज। सो चाहे आपका कोई भी क्लेम है, चाहे गाड़ी की आप परचेज की है और उसकी GST रिफंड करवानी है, मेक श्योर वो बिजनेस पर्पज के लिए होनी चाहिए रादर देन पर्सनल यूज के लिए होनी है।
0: पुनीत, इतनी अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रवासियों के लिए एक और बहुत रेलिवेंट टॉपिक पर, विदेश पैसे भेजने के टैक्स इम्प्लीकेशंस। भारत में हम अक्सर परिवार को पैसे भेजते हैं या शादी के लिए पैसे भेजते हैं या फिर वहां से विरासत आती है, इन सब के लिए क्या नियम हैं, इस पर होगा हमारा अगला एपिसोड। जुड़े रहिए SBS हिंदी पर। इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद। SBS हिंदी की नई श्रृंखला
2: मनी मैटर्स,
0: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
3: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है, SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
4: तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अंश सुनकर अच्छा लगा होगा, अहम जानकारी मिली होगी, और आपको बता दूं कि इस सीरीज के अन्य एपिसोड SBS हिंदी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। और आज मैंने आपसे सवाल पूछा था, एक डायलॉग बताया था और पूछा था कि बताइए कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है, मुझे स्टेट्स के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। और फिल्म तो आप सभी को पता ही है, ये डायलॉग है चक दे इंडिया का। खूब सारे मैसेजेस आए हैं मुझे। पुरोहित जी लिखती हैं, नमस्ते भव्या जी एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और संदेश आए हैं लेकिन इन्होंने अपने नाम नहीं लिखे हैं, इनका जवाब बिल्कुल सही है। संदीप मित्तल का जवाब बिल्कुल सही है। इसके अलावा SD का जवाब बिल्कुल सही है मेलबर्न से। उसके अलावा रीता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है डैंडनोंग नॉर्थ से। साथ ही हमें संदेश आया है क्यूरी जी का, जिनका जवाब बिल्कुल सही है। तेजस का जवाब बिल्कुल सही है, लिखते हैं लव योर वॉइस, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मेलबर्न से दिव्या ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और कुछ और संदेश भी आए हैं जिनका जवाब सही है। दलजिंदर जी का जवाब बिल्कुल सही है, और कुछ और संदेश मुझे आए हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखे हैं। तो भैया, अगर आप अपना संदेश मुझे भेज रहे हैं तो आगे से ध्यान रखें और अपना नाम मुझे जरूर बताएं। खैर, आज के लिए आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से SBS हिंदी और मेरे यानी भव्या पांडे के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले मंडे, जहां लेकर आऊंगी आपके लिए कुछ नए गाने और कुछ फिर से इंटरेस्टिंग। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ फिर से जुड़ेंगे और हम फिर से एक बार खबरों की ओर रुख करेंगे। तब तक जाने से पहले आज की शाम का ये आखिरी गाना सुन के जाएं।

10 जून बरोज बुध की मुख्तसर उर्दू खबरों के साथ मैं हूं रेहान अलबी। अमरीकी सेंट्रल कमांड या सैंडकॉम ने कहा है कि उनकी फौज ने एक अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान पर हमला किया है। सैंडकॉम के बयान में कहा गया है कि यह मिशन बिलाजवाज ईरानी जारहियत का मुतनासिब जवाब था। दूसरी तरफ इसराइली जंगी तैयारों ने लबनान के कस्बे सूर में बड़ा फिजाई हमला किया है। लबनानी सरकारी नशरियाती इदारे का कहना है कि इसराइली हमले में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। लबनान की वजारत सेहत आमा की जानिब से जारी आदाद व शुमार का हवाला देते हुए बताया गया है कि इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई के आगाज के बाद से अब तक 3,666 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 11,321 जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक पैगाम में मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। उन्होंने इसराइल की जानिब से गजा जाने वाले रास्तों की बंदिश के फैसले पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया है। फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा है कि उनके मुल्क ने बरतानिया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे के साथ मिलकर मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्वस होने वाले के बायस इसराइल के वजीर खजाना पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। दूसरी तरफ ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की याद में कायम हेडक्वार्टर ने अपने एलामिये में कहा है कि आयतुल्ला खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन 10 मुहर्रम के बाद अदा की जाएगी। इदारे ने इस फैसले की वजह इन दिनों ईरान और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी मजालिस अज़ा को करार दिया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में हुकूमत की जानिब से कालअदम करार दी गई जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मंगल के रोज मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई, जबकि लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाली रैलियों में शामिल मुजाहिरीन की पुलिस से जगह जगह झड़पें हुईं। कालअदम करार दी गई ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतअद्दिद रहनुमाओं की गिरफ्तारी में मदद या उनके बारे में इत्तला फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपये का ऐलान किया।

किया गया है। जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मंगल के रोज हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके पेश नजर मुजफ्फराबाद और कई शहरों में तमाम मार्केट्स और कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहा, जबकि सरकारी दफातर खुले थे मगर उनमें हाजिरी गैर मामूली हद तक कम थी। शवाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान में पुलिस ने एक एहतजाज पर फायरिंग की, जिसमें एक दर्जन से जायद खवातीन के लिबास के जाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर उन्हें हिरासत में लिए जाने के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा था। ख्याल है कि मगरबी शहर हरात में होने वाले इस एहतजाज में 150 अफराद शरीक थे। अफगानिस्तान में 2021 से तालिबान की हुकूमत ने शरीयत कवानीन की सख्त तशरीह के तहत कवानीन नाफिज किए हैं। हुकूमती फैसलों के खिलाफ एहतजाज गैर कानूनी है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र अफराद पर सोशल मीडिया पाबंदी के निफास को 6 माह गुजरने के बाद माहिरीन और नौजवान इसके मिले जुले नतज पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इस पाबंदी के तहत कम उम्र सार्फिन को प्लेटफॉर्म तक रसाई देने की सूरत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स और यूट्यूब जैसे कई दीगर प्लेटफॉर्म पर 49.5 मिलियन डॉलर तक के जुर्माने आयद किए जा सकते हैं। ताहम मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में और हुकूमती ज़राए के मुताबिक बच्चों के इन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बंद करवाने में मुश्किलात का सामना दरपेश है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर सेहत मार्क बटलर ने कहा है कि वो पुर उम्मीद हैं कि बच्चों की बहबूद का एनडीआईएस का मुतबादिल प्रोग्राम 2028 से पहले मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। नशोनुमा की ताखीर या ऑटिज्म का शिकार बच्चों को इस प्रोग्राम में मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत एनडीआईएस के बढ़ते हुए अखराजात को काबू में लाने के लिए इसके अखराजात में कटौती कर रही है। खानदानों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल की देखभाल के हवाले से इस प्रोग्राम की कटौती पर तशवीश पाई जाती है। विक्टोरियन लिबरल रहनुमा जैसन विल्सन का कहना है कि वो वन नेशन की हिमायत के बगैर भी रियासती इंतखाबात जीतने के लिए पुर एतमाद हैं। फ्रेश वाटर स्ट्रेटजी के एक सर्वे के मुताबिक 39% लेबर वोटों के समेत ज्यादातर वोटर समझते हैं कि वजीर आला जैकेंटा एलन को तब्दील किया जाना चाहिए। एएफएल के लीजेंड नील डैनियर को आज दोपहर एमसीजी में स्टेट जनाजे के जरिए अलविदा कहा जा रहा है। मोटर न्यूरॉन बीमारी के खिलाफ उनकी दहाई भर की जद्दोजहद के दौरान उन्होंने खैराती इदारा कायम किया, जिसने 141 मिलियन डॉलर से ज्यादा तबी तहकीक के लिए फराहम किए। उन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर के लिए भी नामजद किया गया था। उनका इंतकाल गुज़िश्ता माह 65 साल की उम्र में हुआ। सिडनी के दूसरे एयरपोर्ट वेस्टर्न सिडनी एयरपोर्ट से पहली परवाज 25 अक्टूबर को रवाना होगी और इसके टिकट्स अब फरोख के लिए दस्तियाब हैं। पहली परवाज जेट स्टार की तरफ से 11 बजे गोल्ड कोस्ट के लिए रवाना होगी। इब्तदाई बैन अल-अक़वामी रूट्स में ऑकलैंड और चांगी एयरपोर्ट की परवाजें शामिल हैं। यह नया एयरपोर्ट 24 घंटे नाइट कर्फ्यू के बगैर काम करेगा। याद रहे कि सिडनी का मौजूदा एयरपोर्ट रात के कर्फ्यू के तहत चलता है। और यहीं पर अब तक की मुख्तसर खबरें खत्म करते हैं।

0: अभी आप शोएब मंसूर की अपने वक्त की मारूफ फिल्म खुदा के लिए का टाइटल सॉन्ग सुन रहे थे। अब आपको एक वक्फे की तरफ लिए चल रहे हैं, मगर वक्फे से जब वापस आएंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में आपको सुनवाएंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां रखना अच्छा फैसला है। ये हमारी फ्यूल इन फोकस पॉडकास्ट सीरीज का हिस्सा है जो ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के में आपको सुनवाई जा रही है। इसके अलावा मेडल ऑफ ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर हासिल करने वालों से बातचीत भी आप सुन सकेंगे और पाकिस्तान भी आपको लिए चलेंगे और गीत और नगमे भी बहुत से हमारे पास आपके लिए मौजूद रहेंगे, मगर ये सब कुछ इस वक्फे के बाद।
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email

0: at sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: आप हैं SBS उर्दू के साथ और मैं हूं रेहान अलवी। अब ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की तरफ हम आपको लिए चल रहे हैं, मगर इससे पहले ये याद दिलाएं कि आपको हम इसके अलावा मेडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हासिल करने वालों से भी मिलवाएंगे और पाकिस्तानी जेर इंतज़ाम कश्मीर में जो हड़तालें, हलाकतें और एहतजाज जारी है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। मगर आइए पहले जिक्र करते हैं बर्की गाड़ियों का कि क्या वाकई इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदने का के बारे में अगर आप सीरियस हैं लेकिन नहीं जानते कि ये आपके लिए अच्छा फैसला है या नहीं, तो इस हफ्ते खुशामदीद ऑस्ट्रेलिया में जानिए इंतखाब करते हुए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। पेश कर रही हैं वर्दा वकार।
6: आप ऑस्ट्रेलिया को जानने में मदद के लिए SBS ऑडियो का तैयार करता पॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुन रहे हैं।
7: सामीन, क्या आप हालिया अदम इस्तेहकाम और ईंधन की कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल के असरात महसूस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानिब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। फरोख्त बढ़ रही है और हुकूमती मरात इस तब्दीली को आगे बढ़ा रही हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया में ड्राइवर्स के लिए ये तब्दीली किस हद तक अमली है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जिन्हें ईवीज कहा जाता है, ईंधन की कीमतों में इस्तेहकाम न होने की वजह से तेजी से मकबूल हो रही हैं। सनदी डेटा के मुताबिक अप्रैल 2026 में ऑस्ट्रेलिया में बेची गई हर 6 में से एक गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। हुसैन दे स्वयंबर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के प्रोफेसर हैं। उनका कहना है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इब्तदाई सरमायाकारी अभी भी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की निस्बत ज्यादा है, मगर जब से उनकी फरोख्त और इंतखाबात में इजाफा हुआ है कीमतों में कमी वाकई हुई है।
8: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
7: EV خریدتے وقت دستیاب مراعات کے لیے اپنی ریاست یا علاقے کی حکومت سے رابطہ کریں. تنخواہ کی پیکیجنگ کے انتظامات پر ملازمین ای وی لیزنگ کے لیے ٹیکس میں رعایت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ رائل آٹو موبائل کلب آف ویسٹرن آسٹریلیا میں گاڑیوں اور ایندھن کے مینیجر ایلکس فارسٹ بتاتے ہیں۔
9: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
7: Petrol aur diesel gaadiyon ke muqable mein electric gaadiyan chalane mein sasti hain. Andaaza hai ki driver salana eendhan ki lagat mein 70% tak aur servicing ki lagat mein 40% tak bachat kar sakte hain. Professor Dia wazahat karte hain.
8: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
7: لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عوامی چارجنگ اسٹیشنز پر بجلی کی خریداری پر بچت کم ہوتی ہے کیونکہ فی کلو واٹ گھنٹہ قیمت گھر میں چارجنگ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ موجودہ مارکیٹ میں برقی گاڑیوں کی رینج کے بارے میں کیا خیال ہے؟
8: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your

0: stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
1: अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो मुमकिन है आपको एक वक्फ शुदा इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जर नस्ब करने के लिए अपनी मैनेजिंग बॉडी से इजाजत लेने की जरूरत हो, लेकिन कई ड्राइवरों के लिए अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी की केबल को घरेलू पावर आउटलेट में लगाना ही काफी होगा। एलेक्स फॉरेस्ट वजाहत करते हैं।
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
1: ऑस्ट्रेलिया में बिजली से चलने वाली गाड़ियां अभी 20 साल से कम अरसे से मौजूद हैं, इसलिए पुरानी गाड़ियों की मार्केट की अभी इब्तिदा ही है। ताहम गुज़िश्ता कुछ महीनों में इस्तेमाल शुदा ईवी गाड़ियों में सार्फीन का एतमाद काफी बढ़ा है और इनकी दोबारा फरोख्त की कीमतें पेट्रोल गाड़ियों के बराबर आती जा रही हैं। किसी भी नई गाड़ी की तरह बाद अज़ फरोख्त सर्विस की हिमायत और सर्विसिंग के इख्तियारात पर गौर करना जरूरी है। मुमकिन खरीदारों को बैटरी की वारंटी पर भी गौर करना चाहिए। ताहम खुशाइन खबर यह है कि ईवी मार्केट के लिए मुसाबकती होने का फायदा सार्फीन को होता है। एलेक्स फॉरेस्ट वजाहत करते हैं।
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
1: سامعین آپ سن رہے تھے خوش آمدید آسٹریلیا اور میں ہوں وردہ وقار.
3: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا ایکسپلین کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے.
4: یہ تو تھی برقی گاڑیوں کی کہانی. آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ اور کچھ دیر میں ہم آپ کو اور بھی کچھ دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹس آپ کو سنوائیں گے, مگر کیوں نہ برقی گاڑیوں سے نکل کر کچھ ساز و آہنگ کی دنیا میں چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ موسیقی بھی دل کے تاروں کو جھنجھناتی ہے. آج اس وقت آپ کو سنوا رہے ہیں ڈراما سیریل ترک وفا کا یہ گیت. یہ او ایس ٹی محسن عباس اور نرمل رائے نے گایا ہے.

0: अभी आप ड्रामा सीरियल तरके वफा का गीत सुन रहे थे। नुमाया आवाजें मोहसिन अब्बास और निर्मल रॉय की थीं और एक वक्फा ले रहे हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हासिल करने वालों की बातचीत आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी कश्मीर का भी जिक्र करेंगे और कुछ गीत और नगमे भी आपके लिए लेकर आएंगे और कुछ ऐलानात भी। मगर ये सब कुछ इस वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
1: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never landed about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: sbs.com.au/urdu को अपना ऑनलाइन घर बनाएं। ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और तफरीही प्रोग्राम sbs.com.au/urdu पर। SBS रेडियो से लुत्फंदोज हो रहे हैं? हमारे फेसबुक पेज पर गुफ्तगु करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। SBS उर्दू फेसबुक पर।

0: advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: दिलचस्प किस्म की वीडियोस वहां पर मौजूद पाएंगे. facebook.com/sbsurdu पर हम रोजाना चार बार दिन में आपके लिए सेगमेंट्स पेश करते हैं और उनमें वीडियोस भी शामिल होती हैं. इसके अलावा हमारा साउथ एशियन यूट्यूब चैनल भी मौजूद है और आप हमारी नशरियात न सिर्फ रेडियो पर बल्कि अपने मोबाइल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और जहां से आप मोबाइल किसी भी मोबाइल ऐप से सुनते हैं सुन सकते हैं, वहां से वो ऑडियो सारी आप सुन सकते हैं. आइए इस वक्त आपको सुनवाते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हासिल करने वाले कुछ लोगों से बातचीत. और ये पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मोहम्मद अली से, जो चैरिटी तंजीम हेल्पिंग एसीटी चलाते हैं कैनबरा में. आइए उनकी बातचीत सुनते हैं.
7: आप SBS उर्दू के साथ हैं.
8: सामईन, हर साल ऑस्ट्रेलिया में किंग्स बर्थडे के मौके पर उन लोगों को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एजाज से नवाजा जाता है जिन्होंने किसी खास शोबे में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी हों. इस साल ऐसी ही एक शख्सियत जनाब मोहम्मद अली साहब की भी है जिन्हें समाजी खिदमत के सिले में जनरल कैटेगरी में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एजाज दिया गया है. उनसे SBS उर्दू की खसूसी गुफ्तगू सुनिए इस पॉडकास्ट में. आपके लिए ज़ाती तौर पर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हासिल करना क्या मानी रखता है और ये आपके कम्युनिटी सर्विस के सफर की कैसे अकासी करता है?
9: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड मिलने पर याद फरमाया कि मैं अपने महसूसात आपके साथ शेयर कर सकूं. इस एजाज का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर इस अवार्ड का हुसूल बहुत फख्र की बात है और मैं समझता हूँ कि ये फख्र न सिर्फ एक शख्सी फख्र है जो मैं महसूस करता हूँ अपने लिए, बल्कि ये एक इस बात का भी मुझे फख्र है कि बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी ये एक बहुत अच्छी बात है कि मुझे इस किस्म के अवार्ड से नवाजा गया है. एक और भी एहसास जो इस अवार्ड से जन्म दे रहा है वो यकीनन आजजी और इनकसारी का है. मैं बार बार मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैं वाकई में इस काबिल हूँ कि इस किस्म का अवार्ड मुझे दिया जाए. उसकी वजह ये है कि अगर हम ये देखें कि समाजी काम और चैरिटी वर्क बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में, कैनबरा में बहुत अरसे से कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को उनमें बहुत कमतर महसूस करता हूं और मैं महसूस करता हूं कि मैं खुशनसीब तो हूं लेकिन उन लोगों को भी इसमें शमूलियत का मौका मिलना चाहिए. दूसरी तरफ ये भी एक बहुत अहम बात है जो बार बार मेरे जहन में आती है कि मैं 2022 में कैनबरा सिटीजन ऑफ द ईयर मुझे दिया गया था और आज 2026 में ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड मिला है. तो मैं ये समझता हूँ कि हर इस किस्म की का अवार्ड वो एक चैलेंज भी होता है. वो ये चैलेंज होता है कि इसकी वजह से वो तवक्कात लोगों की बढ़ती हैं कि आपको हमने इस काबिल समझा लिहाजा आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है. लेकिन अब आपके लिए चैलेंज ये है कि आप उस तवक्को या उन तवक्कात पर पूरा उतरें. तो ये मेरे महसूसात हैं इस बात पर कि मैंने इस वक्त जो ये अवार्ड हासिल किया है वो सिर्फ मोहम्मद अली की या मेरी ज़ाती काविश नहीं है. इसमें साथ साथ मेरे वो 50 से ज़्यादा हेल्पर्स, वॉलंटियर्स और कोलीग्स जो मेरी तंजीम हेल्पिंग ए सिटी में हैं वो शामिल हैं. और ये एक इज्तिमाई काम है और मॉर्निंग टीज वगैरह होती रहती थी तो वो $10,000 हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उस साल नॉमिनेट करके दे दिया करते थे. फिर 2018 में जब मैंने सरकारी नौकरी

0: कैनबरा के डॉक्टर मोहम्मद अली से बातचीत सुन रहे थे, जो हेल्पिंग एसीटी चला रहे हैं चैरिटी तंजीम, उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया है किंग्स बर्थडे के मौके पर। और एक और शख्सियत हमारी कम्युनिटी की जिया अहमद साहब हैं, उन्हें भी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है। उन्होंने समाजी हमांगी और कम्युनिटी खिदमत किस तरह अंजाम दी हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं।
1: ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का हासिल करना जो है एक बड़े ऑनर की बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कम्युनिटी का काम किया है उसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिला है, लेकिन इसको मेन स्ट्रीम कम्युनिटी की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से इसको जो रिकॉग्नाइज किया गया है, इसके लिए मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है और फख्र की बात है कि मेरी जो ये जिस मुल्क में मैं आया और जहाँ पे मैंने इतने दिन गुजारे, और उस मुल्क से ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और इस तरह से मैंने जो कुछ इस मुल्क को दिया है उसको जो है इस मुल्क ने उसको जो है रिकॉग्नाइज किया है, और ये मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया 1971 नवंबर में यहाँ पे आया था, 18 साल की उम्र थी मेरी, और मैं अपने वालदा वालिद और अपने 5 और भाई बहन के साथ यहाँ पे आया, और आते ही मुझे ये लगा कि ये मुल्क जो है वो निहायत ही अच्छा मुल्क है, और वालिद साहब थोड़ा सा पहले आ गए थे हमसे, तो आने के बाद से उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कम्युनिटी का काम करना काफ़ी शुरू कर दिया था, ख़ास तौर पे ये इंटरफेथ वर्क जो है, जो कि 9/11 के बाद से काफ़ी फैशनेबल हो गया, उन्होंने वो 71 ही में करना शुरू कर दिया था, तो मैं उनके एक तरह से शेडो के तौर पे यंग आदमी था, मैं साथ साथ उनके साथ लगा रहता था, और मेरे ख्याल में उनकी वजह से जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन हासिल हुआ कि मैं भी कम्युनिटी का काम करूँ और ख़ास तौर पर इंटरफेथ काम करूँ और इस मुल्क के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने का काम करूँ, और यहाँ पे एक पीस और हारमोनी और मिलजुल के रहने की एक मिलाने की कोशिश करूँ।
0: कौन सी ऐसी मुश्किलात थी कम्युनिटी की खिदमत के दौरान आपको चैलेंजेस के तौर पर पेश आए?
1: यहाँ पे हालात काफ़ी मुश्किल थे एज ए मुस्लिम इस मुल्क में रहना, ना यहाँ पे कोई मस्जिद थी 71 में, ना कोई हलाल खाने का इंतज़ाम था, ना कोई हलाल रेस्टोरेंट थे, ना बुचर शॉप्स थी, तो बहुत ही छोटी कम्युनिटी थी, और हम लोग परेशान थे कि ये इस फ्यूचर में हम लोगों का क्या होगा, उस कम्युनिटी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, या इवन मुसलमान के तौर पर इस मुल्क में रह भी रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से ये देन है और अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा इनाम है, अल्लाह ताला का करम है कि उसने जो है हम लोगों को बहुत दिया इस मुल्क के अंदर, बड़ी तेज़ी से यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है इस्टेब्लिश हुई, मस्जिदें बनी, हलाल गोश्त इंतज़ाम हुआ, और जो शुरू शुरू में जो मुश्किल थी अब जो है हमारी यंग जनरेशन जो है उसको समझ भी नहीं पड़ सकती है कि वो कितने आराम से यहाँ पर रह रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये जो है चीज़ें जो हैं पहले नहीं थी, और इसमें जो है ख़ासतौर पर जो शुरू शुरू में लोगों ने काम किया है कम्युनिटी के लिए, उसको हम लोगों को जो है वो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए।
0: जिया साहब, इस इजाज़ के जरिए अगली नस्ल के कम्युनिटी लीडर्स और रहनुमाओं को और नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: अगली नस्ल के लिए पैगाम देना चाहूँगा कि मैं हमारे यंग लोग जो हैं वो नेगेटिव चीज़ों के बजाय पॉजिटिव चीज़ों को लें, ये देखें कि कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया जो है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में एक हमारे लिए पीसफुल जगह है रहने के लिए, ग्रो होने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे हम जो चाहे सोच सकते हैं, और इसको जो हम लोग फॉर ग्रांटेड ना लें।
0: अभी आप ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हासिल करने वाले कुछ अफराद से हमारी बातचीत सुन रहे थे, जिन्हें किंग्स बर्थडे के मौके पर इस एजाज से नवाजा गया है, और SBS उर्दू की कई पॉडकास्ट की वीडियोस SBS साउथ एशियन के उर्दू यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं, @sbssouthasian/urdu पर आप जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, instagram.com/sbsurdu पर जाइए, या facebook.com/sbsurdu पर भी हम मौजूद हैं, आप वहां हमें अपने मैसेजेस इनबॉक्स भी कर सकते हैं।

0: अभी आप शहजाद रॉय की आवाज में सुन रहे थे दर्शन, एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। वक्फे से जब वापस आएंगे तो आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जहां बेचैनी, हड़तालें, एहतजाज और हलाकतों की खबरें आ रही हैं। वहां क्या कुछ हो रहा है सुनिएगा पाकिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट में। इसके अलावा आपको ये भी याद दिला दें कि हमारे प्रोग्राम आप यहाँ SBS उर्दू पर, उर्दू का ये प्रोग्राम आप रेडियो पर तो सुनते ही हैं, मगर आप इसे अपने डिजिटल TV पर भी चैनल 33 पर सुन सकते हैं। SBS 1 के ऊपर हम हर आपके लिए नशरियात लेकर आते हैं और TV पर आप उसे जुमे और इतवार को भी सुन सकते हैं। SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न वक्त के मुताबिक 3 बजे पॉप देसी पर नशर होती हैं। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर नशर किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। और एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे के बाद SBS उर्दू की नशरियात जारी रहेंगी।
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: SBS Audio app आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। Google Play या App Store से SBS Audio app मुफ्त हासिल करें।
0: और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि SBS उर्दू की नशरियात के बहुत से ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो हम ऑन ईयर प्रोग्राम में पूरे या मुकम्मल तौर पे आपके लिए नहीं लेकर आ सकते। इसके अलावा भी हम रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से सेगमेंट शाये करते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम हफ्ते में सिर्फ 2 बार होता है, इसलिए ये सारे के सारे सेगमेंट्स इस ऑन ईयर प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाते। तो अगर आपने कोई पॉडकास्ट सुना है, उसकी झलक सुनी है, उसके बारे में सुना है और उसे पूरा सुनना चाहते हैं, या हमारे वो सेगमेंट जो आपसे मिस आउट हो गए हैं, आप हमारे SBS उर्दू के वेब पेज के ऊपर जाकर उसे सुन सकते हैं sbs.com.au/urdu पर। और हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए मुफ्त मौजूद है। उसमें आप उर्दू लैंग्वेज को पसंद कर लें, मुंतखब कर लें और उसके बाद उस पर नोटिफिकेशन भी सेट कर लें तो हमारा कोई पॉडकास्ट आप मिस नहीं करेंगे। आइए अब आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हड़ताल, एहतजाज और हलाकतों की खबरें आ रही हैं। वादी में क्या कुछ हो रहा है सुनते हैं पाकिस्तान से मौसूल होने वाली इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात की खबरें इस हफ्ते शह सुर्खियों में रही हैं। इस सिलसिले में हमने पाकिस्तान में मुकीम सहाफ़ी दानिश इरशाद से बात की है। आइए सुनते हैं वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल। दानिश, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर में हड़ताल की कॉल दी गई थी, वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी, ग्राउंड पे क्या हो रहा है वहाँ पे और क्या सूरत हाल है?
10: ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मीरपुर डिवीजन, बिलखसूस मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बिम्बर और कोटली से और तमाम शहरों से मीरपुर डिवीजन के और उसके साथ साथ पलंदरी ज़िला सतनौती से रावलकोट की तरफ एक बड़ी तादाद में लोग मूव कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की सूरत में। और कोटली में तसादुम की खबरें भी हैं, जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे गुज़श्ता दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कालेदम करार दिया था, उस पर बैन लगाया था और उसके साथ साथ उसकी जो और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान

0: तसादम हुआ, झड़प हुई, तो उसमें कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। ताहम अभी तक हलाकतों की तादाद वाज़े नहीं है। उसके साथ साथ रावलाकोट शहर के अंदर देखा जाए तो रावलाकोट शहर में सुबह और रात को सिक्योरिटी फोर्सेस फ्लैग मार्च करती रहीं और उसकी वजह से खासा खामोश रहा ये शहर। आज सुबह के टाइम रावलाकोट का एक एरिया है चांदनी चौक, वहाँ पर कुछ लोगों ने जमा होने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने शेलिंग वगैरह करके उनको डिस्पर्स कर दिया था। तो आज की सूरत हाल ये है कि अभी तक लॉन्ग मार्च में क्रैकडाउन हुआ वो कोटली में, और उसके नतीजे में कुछ हलाकतें और कई लोग जख्मी होने की इत्तला अभी तक मौसूल हो रही हैं। और ये लॉन्ग मार्च जाहिर है एक बड़ी तादाद है और हजारों की तादाद बताई जा रही है।
1: रावलाकोट में जो सूरत हाल 2 दिन पहले पेश आई थी उसके बारे में काफी अफवाहों का बाजार गर्म रहा है, तो रावलाकोट में इस वक्त सूरत हाल क्या है अमनो अमान की?
0: रावलाकोट की जो सूरत हाल है तो वो 5 जून से ही कशीदा है, 5 जून की रात से, और बिलखसूस उस वक्त से जब पहले हुकूमत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से इस जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कालेदम करार दिया गया एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत, और उसके कुछ ही देर के बाद रावलाकोट में एक जो कोर मेंबर हैं अवामी एक्शन कमेटी के, उनको गिरफ्तार करने के लिए या फिर उन पर कातलाना हमला हुआ, जैसे भी हुआ उनके काफिले पर फायरिंग हुई जिसके नतीजे में उनके एक साथी की मौत वाकई हो गई, और उसके बाद से उमर नजीर कश्मीरी को भी गोली लगी, उनके कान के एक निचले हिस्से में गोली लगी और कुछ सर के हिस्से में गोली छूटी हुई गुजर गई, या जैसे भी था उनके सर पे तस्वीरें जो मैंने आखिरी टाइम देखी थी वो सर पे पट्टी लपेटी हुई थी, और यही बताया जा रहा था कि कान के निचले हिस्से को लेकर और सर को जख्मी करते हुए गोली चली गई। तो उसके बाद से लोगों ने एहतजाज शुरू किया, हालात कशीदा हैं, और जो 7 और 8 जून की दरमियानी शब थी तो उसको फोर्सेज ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया। अभी तक जो रावलाकोट के अंदर इन 3-4 दिनों में जो अमवात हुई है उनकी जो तादाद हुकूमत ने बताई है, जो जिसको बैनुल अक्वामी मीडिया हाउसेज ने भी कोट किया है, बिलखसूस अलजीरा की, मैं कोट करूंगा, तो उनके मुताबिक 11 कैजुअल्टीज हुई हैं जिनमें 4 जो थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार थे और बाकी 7 लोग जो थे वो सिविलियन थे, लेकिन मकामी लोग जो बता रहे हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों की कैजुअल्टीज के बारे में बता रहे हैं। ताहाल उनके बारे में हुकूमत ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं किया, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन रावलाकोट में आज मुकम्मल तौर पर शटर डाउन रहा और फोर्सेस के फ्लैग मार्च देखने को मिले।
1: हालिया दिनों में पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर से ऐसी खबरें आना शुरू हुई जिनमें लगा कि एकदम से तशद्दुद को भी उसमें का अंसर शामिल हो गया। जरा बैकग्राउंड बताइएगा, ये जो 12 महाजरीन की नशिस्तों वाला मामला है इसका पस मंजर क्या है, मुख्तसरन हमारे सामाइन की मालूमात के लिए बता दीजिएगा।
0: महाजरीन की जो नशिस्तें हैं जो एजेके असेंबली में हैं उनको गर्म कमी नशिस्तें भी कहा जाता है और रेफ्यूजी सीट्स भी कहा जाता है, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो 1947 में जम्मू एंड कश्मीर से माइग्रेट होकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जा बसे, उनमें पंजाब में भी जा बसे, केपीके में और सिंध के कुछ एरियाज में, और उन नशिस्तों के लिए सबसे बड़ा एतराज़ ये किया जाता था कि ये जो एजेके असेंबली है, एजेके लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ लेजिस्लेशन पे ये असरअंदाज होते हैं, चूँकि इन नशिस्तों की जो तादाद है वो 12 है और इन 12 की 7 वोटिंग से जो मखसूस नशिस्तें वजूद में आती हैं उनको कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 26% नुमाइंदगी बनती है हाउस की, और ये कहा जाता है कि ये मैनुपलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और मैनुपलेट किया जाता है इस सारे मामले जो लेजिस्लेशन होती है, और फिर हाउस को डिस्टेबल करने के लिए भी इन सीटों को इस्तेमाल किया जाता है, ये इस मामले का एक पहलू है। और फिर हुकूमत की जानिब से जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि चूंकि इन नशिस्तों का मामला मसलाए कश्मीर से है जो यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक डिस्प्यूट है, और इसकी वजह से हमने ये निशिस्त

0: रखी हैं ताकि जो श्रीनगर है और जो यानी वादी कश्मीर और जम्मू सूबे की जो नुमाइंदगी हो सके आज़ाद जम्मू और कश्मीर असम्बली में, तो इस वजह से ये सीट नशिस्तें रखी हैं। ताहम ये चीज़ें हकाइक के बरक्स हैं, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर असम्बली है तो उसका जो जिस पेपर के तहत, जिस एक्ट के तहत वो चलती हैं, जिनको Act 74 कहा जाता है, अब वहाँ पर पोलिंग कैसे होती है, कौन वोट कास्ट करता है, इस सारी चीज़ की किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं होती और इस तरह से इसमें किसी ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी मौजूद है। तो ये सारा मामला है। इसके अलावा भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन जो इनके लिए कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर ये मसला है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये नशिस्तें हैं, तो इसमें किसी किस्म की मेरे ख्याल में कोई सदाकत नहीं। ये एक सियासी बयान के तौर पर इसको देखा तो जा सकता है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ भी इन महाजरीन का लिजान बरकरार रहे।
1: पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस सिलसिले में पाकिस्तान में मुकीम सहाफ़ी दानिश इरशाद से की गई बातचीत आप सुन रहे थे। मैं हूँ रेहान अलवी और आप हैं SBS उर्दू के साथ। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि SBS उर्दू इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद है और हम मोबाइल पर भी आपके साथ हैं। अब स्टूडियो घड़ियां कह रही हैं कि आपसे बिल्कुल रुख्सत लेने का वक्त आ गया, और जब रुख्सती का वक्त आता है तो शायद चलते चलते आपके कानों में रस घोलने के लिए कोई ना कोई गीत हमें आपकी समातों के तक पहुँचाना होता है। और इस वक्त मैं ऐसा गीत आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ जिसमें जाने वाले को रोकने का जिक्र है। जाहिर है घड़ी तो रुकती नहीं, मगर हम हर जगह मौजूद हैं, वेब पेज पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और मोबाइल ऐप पर, तो हमें फॉलो करते रहिएगा। आप ये खूबसूरत गाना अहमद रुश्दी की आवाज में इंजॉय कीजिए, फिल्म अमर अरमान का, जिसकी मौसीकी सुहेल राणा ने मुरतब की थी। और मुझे अपने आज के मेजबान रेहान अलवी को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ, फिर भी लेंगे घर खुदा लाया अल्लाह ने के पान।